रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show, Media Partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.
1: कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। मौसीकी इसकी धड़कन है, कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। यह है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है।

दोस्तों रेडियो चुनौर की हॉट फ्रीक्वेंसी पर लो आ गए हैं हम। मैं हूं और जिस आप एंजॉय कर रहे हैं मस्त शो दोपहर के बज बजता इन द स्टूडियो। जी हाँ, फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनौर के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, ताकि आप हमारा कंटेंट एंजॉय कर पाए और साथ ही साथ हर दिल की धड़कन को और जोरों से धड़का पाए। डाउनलोड करें हमारा ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। यहाँ हर दिल को धड़काने की वजह हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, और हाय इस धड़कन को धड़काते हैं आप। जब से इसके साथ मजेदार शो वो सब सिर्फ धड़काते रहो।

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: It's not working. It's just not happening.

0: to Zeus.
1: कौन आया?
2: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट. रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट.
3: तो रेडियो चुनाव की हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्स और ब्रदर. आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर अपडेट. जी हाँ, क्या होगा आज का मौसम का हाल बताएंगे हम. क्या होगा मौसम खराब या मौसम होगा बेमिसाल, जानने के लिए रेडियो चुनाव का वेदर अपडेट. आज मौसम में गरज बरस की संभावना. वही अगर हम मौसम की बात करें तो आज जब मौसम रोज की तरह रोज का हो गया, कशीर में सुबह ताप पत शाम युवा युवां रोत त्राटासान. देयर इज नो डिफरेंट फॉर टुडे. आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और वही हाल होने वाला आज भी. शाम होते होते मौसम बिगड़ जाएगा, बट ये ट्विस्ट है कि शाम जैसे ही बीत जाएगी मौसम भी बेहतर होगा. 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम आज के लिए. और उसके अलावा अगर हम अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स वीक पर ह्यूमिडिटी 77%, विंड स्पीड 2 किलोमीटर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:25 पर. आज का सनसेट होगा 7:33 पर. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव. मैं हूं जॉक्स, सिर्फ धड़काते रहो.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: George Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: व्हाट्सएप पे
4: रेडियो चैनल 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप जी हाँ व्हाट्सएप शो पर आ जाता है जो है वायरल क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बातें मानी कि जॉनी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा।

ये वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आपको बताते हैं कि किस तरह से एक फॉरनर एक कैफे में बैठे बैठे बचक्की रह गई व्हेन शी ऑर्डर्ड अ चार्जर ऑनलाइन। यहाँ एक फॉरनर ने अपना वीडियो शेयर किया और कहा कि मेरी फोन की बैटरी 2% थी और ऑनलाइन चार्जर ऑर्डर किया और उसके बाद 10 मिनट में वो चार्जर जो है डिलीवर हो गया। ये फॉरनर यूनाइटेड स्टेट्स की बताई जाती थी और साथ ही साथ इन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कहा यूएसए में भी इट्स नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल इट इज कि इतनी फास्ट कोई चीज की डिलीवरी हो। 10 मिनट में चार्जर आते ही शी वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड शी वॉज लाइक इंडिया जैसा देश कहीं और हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है हम हिंदुस्तानी अक्सर गर्व महसूस करते हैं दैट वी आर बोर्न हियर एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दिस लवली कंट्री। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM मैं हूं जॉक्सूस। आप बने रहें सुनते रहें हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

इस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हर दिल की धड़कन और हर दिल की धड़कन को आप धड़का रहे हैं। मैं हूं जॉक्सी, आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। व्हाट्सअप शो में वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ दोस्तों के नाम। साइमा जुड़ी है, देखिए भाई मैंने वादा निभाया नहीं बट मजबूरी थी, जाना पड़ा, इसलिए आई फील गुड में मैसेज नहीं ये, तो कोई बात नहीं, वी कीप वेटिंग फॉर यू। आपका प्यार जब मिलता है तो सच में अच्छा लगता है, एंड वी अंडरस्टैंड दिस कि होती है इंसान की मजबूरियाँ, बट आप रुकते हैं, सुनते हैं, प्यार देते हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। समीर हमारे साथ जुड़े हैं, समीर ठंडी हवा का झोंका लिखते हैं। समीर भाई सलाम, बड़ा मिस करता हूँ आपको और आपकी आवाज़ सुनता रहता हूँ, और आज सोचा शो में शामिल करूँ ताकि मंडे तक याद ताज़ा रहे। बस समीर आप यूं ही ठंडी हवा का झोंका बन के हमें मिलते रहें, हमें महसूस कराते रहें कि आप हमारे आस पास हैं। गॉड ब्लेस यू जोक्स अपार्ट एंड थैंक यू सो मच। हम हमेशा रेडियो चैनल प्रेम को याद रखते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ 8899904904 तो यह क्यों कॉल करित व्हाट्सएप या ही क्यों करित टेक्स्ट मैसेज तो पान कथा इस तरह बात नहीं। दोस्तों आज हम समुद्र के अंदर डुबकी लगाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो मेहरबान कदरदान पाए जाते हैं ओशन फ्लोर के अंदर। ऐसी ऐसी फैक्ट्स, ऐसे ऐसे रिसर्च थ्योरी सब पहुंचाएंगे आप तक, क्योंकि आज वो सब शो का टॉपिक है हिडन ओशन फ्लोर। अब पानी वाला डांस तो कश्मीर कर ही रहा है, सुबह शाम से जरूर पेमाथ में जी ख्याल था, उनकी टेम्परेचर शिफ्ट होते हैं, अतिशन सन जैकेट लगा बच्चे गर्म गा बच जैकेट कड़ा बच ए सी एस मत बेहान बच पियान अस्ल बेहान गर्म तर गर्म तर गर्म तर अत मे इंसानस हकान ना बड़ सोसी नजल जुकाम ग سوتی سوتی اس یہ پھم چھوڑا ہے نا انگلش پہ پولن چھ ونا اچھا خیال تھا ون تھوڑا چھ احتیاط برتن کہ ماسک وغیرہ اگر زیادہ چھ باسا کنجشن چھ پولن وغیرہ زیادہ چھ کنی ایریا اس من تپر چھ گزر بسر تو ضروری ہے کہ ماسک وغیرہ کا استعمال ضرور کرے خیال تھا ون اگر کس نزل اس تمس ون تلا ماسک تھز لگیت یا پان احتیاط تھز یا باقین یوت نلار ات من چھ دلس پہ نیون کی हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो चुनार सुनते रहिए, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहिए। मैं हूँ जॉक्स, धड़काते रहो।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो जना 90.4 FM मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश बॉलीवुड न्यूज एंड टेक टॉक्स। यहाँ बॉलीवुड की धड़कती फड़कती खबरें और टेक न्यूज का निराला अंदाज कुछ ही देर में पहुंचेगा आपके पास। हर दिल की धड़कन रेडियो जनार, मैं हूँ चौकसूस, रहो धड़काते रहो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: to Zeus.
1: कौन आया?
2: Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News.
3: Bollywood News. Radio Channel 90.4 FM show. What's up, Shoka segment. Bollywood News. बॉलीवुड न्यूज़ में आइए बात करते हैं धर्मपा जी की। धर्मपा जी जो कि इस दुनिया से चले गए, लेकिन कहा जाता है कि कलाकार कभी नहीं मरते, वो अमर होते हैं, हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। ऐसा ही कुछ मानना है उनके बेटे बॉबी देओल का, और बॉबी देओल ने कहा कि धर्म जो है धर्मेंद्र ही मैन ऑफ बॉलीवुड। उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई एक टैलेंट कॉन्टेस्ट से हुई, और उसके बाद उन्होंने खिताब जीता दैट ही बिकेम ही मैन ऑफ बॉलीवुड। और उसके अलावा वो एक ग्रेट एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही हम्बल और सिंपल इंसान भी थे। और जैसे ये खबर बॉलीवुड और ये स्टोरी लोगों के साथ शेयर हुई, लोगों ने बरबर के प्यार दिया और सबने मिलकर धर्म जी को श्रद्धांजलि भी दी। और इस फ्रीक्वेंसी पर बातचीत जारी है, आपकी और हमारी यारी है, 12 बजे तक की पूरी तैयारी है। सो मेरी जान श्रेय धड़का धड़

90.4 FM.

जी हाँ, प्रभु का नाम लेते लेते वक्त बीत चुका है और वक्त आ गया कि आज के लिए आपसे इजाजत ली जाए। दिस इज बॉय ज़ूस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें एंड इट्स अ वीकेंड फोक्स, गो एंजॉय, हैव अ चिल। बादलों के बीच में उड़ते हुए, जी हाँ, लहराते हुए जाइए, अपना वक्त बिताए एंड रेडियो चुनार सुनते रहिए और दिल की धड़कन को धड़काते रहिए। आरजेदीप आपसे जुड़ने वाली है शो चुनार बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट, बस जरा सी देर में। Until we meet again, keep your hairs high, walk tall and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, khushbash, masalama.

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM. 90.4 FM.

दिल तो हमारा भी आ चुका है, इस बात पे कि शो तो शुरू हो चुका है ना बॉस। 91.4 रेडियो टनार पर आगाज हो चुका है शो टनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब्रेंट ड्राइव ड्राइव ड्राइव ड्राइव। देखिए वो ना हड़बड़ी में गड़बड़ी तब होती है जब एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं तो एक्साइटेड हूँ ही, आप भी है पता है मुझे, तो बन जाइए शो का हिस्सा, चलो अगर कोई मजेदार सा हिस्सा, क्योंकि आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो टनार 91.4।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स ढेर सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये शुरुआत हुई है सारा डे बॉस और बहुत सारी खुशियाँ आने ईद की तैयारियाँ चल रही है। मैं सुबह जब आई तो हर एक जगह पर वो रौनक छाई हुई है एंड वो एक अलग ही वाइब इंसान को आ जाता है कि नहीं यही तो है, इसी वाइब के लिए मैं तो रुकी थी कि ईद आ रही है भैया। यार आई एम श्योर आपने भी शॉपिंग की होगी, आपकी प्रिपरेशंस भी सही जा रही होंगी और आपने ड्रेस भी लाया होगा, मैचिंग चूड़ियाँ लाई होंगी, इयररिंग्स लाए होंगी, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है लड़कियों के लिए, खासकर ईद पे बिल्कुल टाइम नहीं होता। सो ज़रूरी है कि वैसा ही हाल इस ईद पे लड़कों का भी होता है, कुर्बानी और उसमें फिर गोश्त बांटना या फिर अपने अपनों के साथ टाइम बिताना। लड़के भी इस टाइम पे कहते हैं कि हमारे पास भी भैया जी टाइम नहीं है, यानी कि बीजी रहता है सब कुछ और बीजी और ईजी लगता है ये वाला ईद, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये ईद पे काम करना पड़ता है।

0: श्योर आपका भी ऐसा हाल है, कोई एक्सपीरियंस है मुझे बताइए, कौन सी सी चीज़ है जो ईद के टाइम इन खासकर प्रिपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, सफाई वगैरह, यानी हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, बट वही है ना कि बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं कि यार इसकी ईद अच्छा सारा टोन। अब आप मुझे बताइए कि आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? ईद बस चंद ही दिन रह गए ईद में, तो क्या तैयारियां जा रही है, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? 8999904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कैसे है आपके अभी के लिए हालात, जज्बात और ख्यालात।
1: चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे।
0: और आई एम श्योर कि वो लोग जो कुर्बानी मारते हैं ना, वो यही एट द एंड कहते हैं कि जान ले लो ना जान रे, और ये तो उनके दिल की बात होती है, बट हमारे दिल की बात और आपके दिल की बात ये है कि बैक टू बैक सॉन्ग्स चलाए जाए।
1: इसको लगाया तो जाना, उफ ये मोहब्बत है एक कयामत, उसमें
0: नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ और बराबर हूँ मैं 2 बजे तक आपके साथ, और इवन एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है आज, अब सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ नहीं, आई एम श्योर कि हमारी पूरी वाइब जो ट्राइब उनको पता है कि क्या होता है सैटरडे को खास। मुझे बताइए शो कैसा बन जाए, बैक टू बैक सॉन्ग्स ओनली ऑन रेडियो 99.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM। The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीट्स और रिपीट शो चुना और बीट्स अब एंजॉय कर रहे थे, सारी बातें हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि बहुत साइड से ट्रैफिक को लो किया जा रहा है, आप आराम से जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आ सकते हैं, जा सकते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, बट बी केयरफुल ड्राइविंग स्पीड को फॉलो कीजिए, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, क्योंकि हमारे एक छोटे से एफर्ट की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी कभी बच सकती है। सो इन छोटे छोटे एफर्ट्स जो हमारी लाइफ में काफ़ी मैटर करते हैं हर एक इंसान के लिए, हमारे लिए, दूसरों के लिए, और हमारी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी पड़ती है। इट्स नॉट ओनली ट्रैफिक पुलिस हमारा ख्याल रखे, हमारे इन चीज़ों का ख्याल रखे, ये हमारा भी फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को खुद से ही करें। लाल के लिए आप ट्रॉल कर रहे हैं, पता हो कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा, एक सही मैसेज आती है और सच में आप रियल लाइफ में हीरो बन जाते हैं।

देखिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, अब एक ख्याल रहना चाहिए कि फुल स्पीड ना हो, वरना वो कहते हैं ना कि गड़बड़ी तो होती ही है, और हमें हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी। ख्याल रखना है अपना, कूल बनना है, फूल नहीं। एंजॉय कीजिए स्ट्राइक को, आप सुन रहे हैं ऑटिस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ

करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्यूनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: जी हाँ, खुशियाँ तो आ चुकी है क्योंकि ईद के प्रिपरेशंस चल रही है और आज

हम शो पे भी बात कर रहे हैं कि क्या कुछ तैयारी हो रही है, स्पेशली लड़कियों का, चूड़ियों से लेकर आउटफिट तक, यानी कि हर चीज़ रेडी रहता है, यानी कि एस्थेटिक फ़ोटोज़ और क्या कुछ नहीं। देखिए, ये ईद होती ऐसी है ना कि अपनों को करीब ले आती है और ईद पे भाईचारा बढ़ता है, आपसी में जो प्यार है वो बढ़ता है। अब क्या क्या नहीं है इस ईद पर, सो ओवरऑल प्रिपरेशन में इतना टाइम लगता है ना, और फिर ईद कैसे गुजरती है पता ही नहीं चलता। बट ओवरऑल जो भी है, इस टाइम की वाइब और एक्साइटमेंट वो काफ़ी अलग होती है। सो वी आर गोना टॉक अबाउट कि क्या चीज़ें हैं जो हम इस ईद पे करते हैं और हमारी लेडीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, हम सब का क्या कंट्रीब्यूशन, लड़कों का सबसे ज़्यादा इस ईद पर, ईद उल अज़हा पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। सो ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ईद वाइब और क्या प्रिपरेशन से। बॉस इन्जॉय कीजिए इस ट्रैक को, बात हो रही है, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 91.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: शो रेडियो गर्ल्स और आपकी रेडियो गर्ल्स आपकी दोस्त आपके साथ हाजिर हैं। हम दोनों यहाँ पर हैं क्योंकि आज बात हो रही है ईद प्रिपरेशंस के बारे में। देखिए ईद जोरों शोरों से है। देखिए इस बिटवीन में मैं असरा को बोलना भूल गया। सर कैसे?
1: वेलकम है जी, वेलकम हमारी हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे।
0: अपना ही रेडियो स्टेशन।
1: बिल्कुल अपना ही गराज है भाई। बट एक चीज जरूर है कि थैंक यू दीवा लेट वेलकम कर रही है।
0: देखिए खुशी में मैं भूल जाती हूँ कि असरा भी सामने है और इनकी भी खुशी है।
1: हाँ जी, और देखिए खुशी तो है और क्योंकि ईद की बात है और इस ईद पे बहुत सारी चीजें होती हैं। हर ईद पे होती हैं, हर साल दो ईद होती हैं एंड ये ईद इसलिए खास है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले पता होती है कि कब ईद है। सबसे बड़ी बात तो वो
0: है। दैट्स ट्रू,
1: क्योंकि जो नॉर्मली ईद उल फितर होती है उसमें चांद रात होती है तो हमें वेट करना पड़ता है। चिल कि हमें कल ईद है भाई, खुश है।
0: देखो खुशी तो मुझे भी महसूस हो रही है ना एंड ट्रस्ट मी असरा की खुशी तो अलग ही लेवल की। जैसे बोल रहे ना, बोलने में भी वो खुशी दिख रही है।
1: बिल्कुल,
0: एंड वी शुड बी हैप्पी। यस,
1: आई थिंक कि सबने आउटफिट्स प्लान कर लिए होंगे।
0: डेफिनेटली,
1: सब लाइक नई नई चीजें, बैंगल्स एंड खुशी तो है कि भाई
0: बिल्कुल। अब इस साल अब एक चीज है, इस चीज का ड्रामा तो नहीं होगा कि कश्मीरी जोड़ियां नहीं मिल रही है क्योंकि इतना ज्यादा अगर हम देखें ना जो ईद उल फितर है उस पे काफी ज्यादा लोगों का रश देखा हमने, स्पेशली दैट क्रेज फॉर कश्मीरी चूड़ियां। अब एवरीबॉडी वाज लाइक कि कश्मीरी जो सनग्लासेस आ रहे हैं, कश्मीरी चूड़ियां आ रही। अब बता नहीं क्या क्या कश्मीर का, अभी अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल रही है।
1: देखिए वो वैसी कश्मीरी चीजें जो एक्चुअली कश्मीर से है या नहीं,

0: इट्स अ मिस्ट्री बट
1: यस यस एक्चुअली बट सही है. आप देख लीजिए कि अभी अगर हम देखें ना एक चीज कहीं ना कहीं जो वायरल होती है ना फिर इंसान का वो भी हो जाता कि दिल
0: करता है
1: कि बहल जाता है कि नहीं जी इसी चीज को लेना है और इसी पे भी मुझे कश्मीरी चूड़ियां ही पहननी है. अब असरा ने पता नहीं लाए होंगे कश्मीरी चूड़िया, वो तो आप असरा के सोशल मीडिया हैंडल पे ही देख लेंगे.
0: हाँ, बिल्कुल मुझसे नहीं इनसे भी पूछिए, आरजेदी वो मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक. बिल्कुल.
1: और अभी ये भी मिस्ट्री है कि कौन क्या पहनेगा. सबका वो होता है कि ईद पढ़ा बजार में क्या आउटफिट चला हो नीचे में ऑन फिट एंड डेफिनेटली वही होता है. हम सभी एक्साइटेड होते हैं किसने क्या पहना बट ओवरऑल इट्स फन इट्स वो वाइब की जो आपसे मतलब आप रोकने की कोशिश करोगे नहीं रुकेगी क्योंकि वो मतलब आप घर जाओगे ना आपकी फैमिली देखोगे आपकी फैमिली मेंबर्स देखोगे उनकी भी खुशी है लड़कों की खुशी है. हाँ लेकिन थोड़ा सा लड़कों का ट्रॉमा भी होता है अभी कुर्बानी बांटने जाना है काम करने जाना है. सो ओवरऑल सभी मेहनत कर रहे हैं एंड स्पेशली हमारी लेडीज हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज वो क्या मेहनत कर रहे हैं सफाई. और अब देख लीजिए ईद एक दिन की होती है एक महीने की सफाई लगती है उसमें हर एक चीज होना चाहिए. और हमारे माओ का ना अलग ही एक चीज चलता है स्पेशली ईद पे कि जो ईद फितर पे बर्तन वर्तन धोए ना वो फिर से धोने वो पैक करके बंद ही रखने लगे ना उनको धोना जरूर.
0: आप देखिए अब आपका क्या फिट है वो हमें बताइए और आपकी और जोड़ी एकदम हिट है बट आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा. 8899-04-904 इस नंबर यू कैन कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप और अपने विचार हम तक भेजिए. और बैक टू बैक ट्रैक्स
1: या बैक टू बैक ट्रैक्स हमें आप पे मौका दस्तूर है और ईद है ईद की वाइब है. जुड़ जाइए शो कैसा बन जाए रंग लग गया है और रंग में आप भी रंग भर दीजिए. आपका शो है आप इस शो को और भी महकदार बनाइए. शो कैसा बन जाइए एंजॉय कीजिए ट्रैक. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4।

देखिए दीदार तो हमने बराबर 2 बजे देख दिया था, और देखिए 2 से लेकर 4 तक रेडियो चनार पे मैं होती हूँ, वो भी हर दिन। अब वेंसडे और सैटरडे की एक स्पेशल बात है कि रेडियो गर्ल्स होता है और मैं और दीबा साथ मिलकर आप तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहुँचाते हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू वेमेन। और अभी रेडियो गर्ल से ट्रांजिशन हो चुका है हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, बजिंग क्या है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो कहीं और नहीं मिलता। शो शुरू हो चुका है और बराबर 4 तक चलेगा। बहुत सी बातें हैं ट्रेंडिंग रील्स मीम्स के अलावा, अपडेट्स के साथ साथ 1 मिनट फैक्ट, उसके साथ साथ टॉपिक, अरे बहुत कुछ है। और आते आते ही कुछ क्रेजी प्ले होता है। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: માં આજે અસરા કે સાથ
1: ઓન્લી ઓન રેડિયો ચુનાર 90.4 FM.
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM. ये है हर दल की धड़कन. जी हाँ, शो शुरू हो चुका है, अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ है और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है ट्रेंडिंग. जी हाँ, क्या है ट्रेंडिंग, आखिरकार क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या यूट्यूब. लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, लिप सिंकिंग या वीडियोज बन रही हैं. और आज एक गाना है और लिटरली इट्स अगेन फ्रॉम पंजाबी पॉप कल्चर म्यूजिक. एंड स्पेशली आई टॉक अबाउट पंजाबी पॉप कल्चर म्यूजिक वेरी ऑफन क्योंकि यही है अभी द टॉप क्रीम ऑफ म्यूजिक एंड पीपल एंजॉय इट. स्पेशली अगर देखा जाए तो जो पॉप कल्चर म्यूजिक होता है, जो पंजाबी पॉप होता है, बेसिकली बहुत अपफ्रंट होता है और उसके साथ साथ बहुत अपबीट भी होता है एंड पीपल डेफिनेटली लाइक इट.
3: बस रहन दो, ना लड़ो मेरे हुस्न दे दुश्मना नाल, ए जमाना जालिम है ते जालिम.
2: ये जमाना जालिम है पर हम जालिम नहीं है. हम आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात सब तक पहुंचाते हैं. तो बस आपको करना ये है कि 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, इसका नाम है तलजा एंड दिस इज बाय जस्सा डिल्लो एंड दीपक डिल्लो. एंड ये जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, सॉन्ग, एक्चुअली दिस इज वेरी फेमस राइट नाउ. पीपल आर लाइक यूजिंग इट ऑन देयर स्टोरीज, रील्स पे. एंड सबसे बड़ी बात, दिस इज फ्रॉम गुरसिद्धु म्यूजिक. मैं वासरा, शो है हंगामा. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई. आप एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुना.
3: ओ बेबी बस रहन दो, ना लड़ो मेरे हुस्न दे दुश्मना नाल.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा है तो पर अपडेट्स भी ज़रूरी है, और अभी की अपडेट इज़ रिलेटेड टू रेलवे अपडेट्स। एंड आज की यही अपडेट है कि एवरी ट्रेन इज शेड्यूल्ड एज पर द समर टाइम टेबल, और आप समर टाइम टेबल को अवेल कर सकते हैं द ऑफिशियल ऐप ऑफ इंडियन रेलवेज रेल वन। आई विल रिपीट द ऑफिशियल ऐप रेल वन, जहाँ पे आपको कोई भी जो भी ट्रेन अपडेट्स हैं, चाहे ट्रेन

स्टेशन हो, लाइव ट्रेन लोकेशन हो, और उसके साथ साथ आप अपनी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, इवन नॉट जस्ट फॉर कश्मीर रेलवे लिंक, दैट इज बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन, एंड नाउ फॉर्चुनेटली वंदे भारत दैट गोज टू अप टू कटरा एंड टू जम्मू डायरेक्टली नाउ, वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट. बट अभी की बात करें तो इनके इन सब ट्रेन रेलवे लिंक्स के अलावा जम्मू एंड कश्मीर

और जरूरी है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंचे, सो दैट यू डू नॉट फेस एनी डिले इन योर शेड्यूल्स या ट्रेन मिस ना हो. फिर आप ये बोलते रह जाएंगे कि ऑलमोस्ट मैंने ट्रेन कैच कर ली थी. उन चीज से बच के रहना चाहिए. और अभी की बात करें तो एक बहुत ही फ्रेशली फ्रेश रिलीज ट्रैक रहो बच के बजास मानिक, एंड दिस ट्रैक हैज बीन रिलीज्ड ऑन द डेट ऑफ 22nd ऑफ मे. और अभी ही इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ लाइक अटेंशन फ्रॉम पीपल. वो भी इसलिए क्योंकि जैज मानिक ने बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया था, कोई चीज कोई सॉन्ग रिलीज नहीं किया था, एंड कह रहे हैं कि ये जैज मानिक का कमबैक है. अब देखिए, इनका तो कमबैक हो गया, हनी सिंह का भी हो गया, उनका तो कई बार हो चुका है. आप बताइए आपका कमबैक कब होगा. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ईद भी आने वाली है, सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ईद के बाद अब अगर हम डाइट करेंगे ईद के, इवन को ईद पद परहेज करूँ या कोई भी चीज़ है, अब हम ये सोचते हैं मेंटली कि अब सब काम ना ईद के बाद होगा. आप भी बताइए कि अगर आपने ऐसा सोचा है, और अगर सोचा है तो हमें भी बताइए. 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप में, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़.

हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, अपडेट्स के बारे में बात हो गई, क्या ट्रेंडिंग है वो हो गया, आपको ये भी बता दिया कि आज का एक चीज तो रह गई ना, बट वो टॉपिक है। और आज का टॉपिक क्या है, वो ये है कि नए वार्डरोब ट्रेंड्स हर जगह आते हैं। लोग क्लोथ्स चेंज करते हैं, एक्सेसरीज चेंज करते हैं, अपना तौर तरीका, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में क्या क्या चेंज हुआ है।

हमारा दिल तो करता है कि हम आपको बताएं कि न्यू ट्रेंड्स, वार्डरोब ट्रेंड्स इन कश्मीर, क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, और इसके अलावा कौन से ऐसे स्पेशली कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कश्मीरी कल्चर को बहुत ही खूबसूरती से सामने ला रहे हैं। और इसके अलावा भी बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली अगर ईद आने वाली है तो बात करें कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कश्मीरी टैग दे दिया जाता है, क्या वो सही है, और उस मिस्ट्री को हम रिजॉल्व करेंगे। बट जिससे पहले हम ये सब डिस्कस करें, देर इज लाइक देर आर अ लॉट ऑफ ट्रैक्स लाइंड अप। मैं हूँ अस्ट्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

आउच की बात नहीं है, बट ये जरूरी है. देखिए आपको बताते रहना है कि आज क्या है, आज बहुत स्पेशल दिन है. अब आपको पता नहीं हो बट मैं याद दिलाऊंगी, आज सैटरडे है बॉस, एंड सैटरडे इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर संडे, फन डे. और ये सोचने में बता देता है इंसान सैटरडे कि भाई संडे को हम क्या क्या करेंगे, हमारे प्लान्स होते हैं, बहुत कुछ होता है. सो हैप्पी अबाउट इट. And this is just a reminder कि आप अपने जो भी plans हैं हमें भी बताइए, कि आप मालूम कि कोई और inspire हो जाए और वो भी आपसे inspire होके अपने plans बनाए, है ना? अच्छा है, क्यूट. बट ये भी है कि आप के अगर प्लान्स नहीं है तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि संडे इज़ ऑल अबाउट रिचार्जिंग योर सेल्फ. संडे इज़ ऑल अबाउट कि आप खुद को थोड़ा रिफ्रेश करें, ताकि जो आने वाला वीक है उसमें आप अपना 100% दें. और आने वाले वीक में ईद भी होने वाली है, तो यू हैव टू हैव अ क्लियर माइंड. धड़कन तो जागेगी, बिकॉज दिस इज द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर, हर दिल की धड़कन. मैं हूँ अस्रा सुंदरी, रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है डेफिनेटली हर दिल की धड़कन.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल।

वेलकम टू द हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर शो है अंगामा और आज हम बात कर रहे हैं जो नए वार्डरोब ट्रेंड्स हैं कश्मीर में उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात अगर कश्मीरी वार्डरोब की बात करें जो एग्जिस्टिंग कल्चर है हमारा वो काफ़ी रिच है, बहुत खूबसूरत भी है। चाहे हम किसी भी एम्ब्रॉयडरी की बात करें या हम अटायर्स की बात करें, एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो आरी तिल्ला एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और सबसे खूबसूरत और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जो एम्ब्रॉयडरी ट्रेंड्स हैं, ये अभी से नहीं बल्कि बहुत पुराने ट्रेंड्स हैं। और कश्मीर इज नोन फॉर आरी एंड तिल्ला वर्क। और वहीं अगर देखा जाए ये तिल्ला वर्क, ये आरी वर्क अब कश्मीर से बाहर जा रहा है और लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है। देखिए, बहुत सारे लोग फैशन को, क्लोथिंग को, एक्सेसरीज को, अटायर्स को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनसे भी रेवेन्यू जेनरेट होता है। लोग फैसिनेट होते हैं, जैसे हम अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ड्रेसेस हो, मिड ड्रेसेस या मैक्सी ड्रेसेस, ड्रेसेस के अलावा अगर हम जापानीज किमोनो की बात करें, ये सब चीज़ें एक्चुअली हमारा कल्चर नहीं है बल्कि किसी और कंट्री का कल्चर है। बट जब हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या कुछ फ्यूजन्स बनाते हैं डिफरेंट कल्चर्स के, देखिए दिस इज़ अ हिंट कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं आगे, बट अभी वी विल स्टिक टू कैसे बहुत सारे ऐसे अटायर्स हैं और बहुत सारी ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जो बाहर से कश्मीर आई है और कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी बाहर गई है। अंदर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की वजह से, जो मिक्सचर ऑफ कल्चर्स है उस चीज़ की वजह से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी नई नई ट्रेंड्स सामने आती हैं जो एक्चुअली बहुत खूबसूरती से बैलेंस करते हैं हमारा कल्चर और एक्चुअली द फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लोथ। देखिए, कश्मीर की बात हुई है और एक कश्मीरी सॉन्ग इज द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू अस। मैं शुभासा ये लिए इस कोशिश बोझाई।

beats with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

मैं तो बराबर 2 बजे आ ही गई थी, पर अभी 4 बज रहे हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। और आऊंगी पर कल नहीं, मंडे को, क्योंकि कल है संडे और हमारा भी आराम का दिन है। बस और देखिए खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक बहुत बार हुई है भाई। हर हफ्ते होती है संडे, हर हफ्ते आता है और हर हफ्ते मैं संडे का इंतज़ार करती हूँ। और आप भी कुछ अच्छा एक्साइटिंग संडे को प्लान कीजिए, स्पेशली नेचर में जाना मुझे बहुत पसंद है। और आप भी सोचिए आपको क्या करना है और मुझे बता सकते हैं, बट अब यहाँ नहीं बल्कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यू विल फाइंड मी बाय RJASR AA Astra with the AA। मैं हूँ Astra शोधा अंगामा, आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक।

0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: है।
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,

0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

can't wait. Because she has absolutely no idea. Let's go.

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन

0: जिसके लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली रेडियो चुनार 90.4 FM।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूँ क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूँ क्या।

0: जल्दी चलो, जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम्हारी, मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गए।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: और मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
1: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल नहीं
2: दिला दीजिए ना।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: प्यास है।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
2: 90.4
1: एफएम। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम।
3: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

नशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दौड़ कुछ नहीं कहते, मगर

दिन, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: महक जा
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा तारा रा, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हमसे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: ले आते हैं
1: मेरी जूती से
0: जूता पॉलिश करेगा जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।